0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम। गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते वन टू थ्री फोर ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए रेडी वन टू थ्री